0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: टाइम चेक सोनी एफएम स्टूडियो टाइम
2: 3 PM दिउँसो 3 बजे
0: टाइम चेक को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ध्वलामय अफसेट प्रेस सोलु दुकुन्दा नगरपालिका 5 सोलु खुम्बु

0: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड को मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब उखड़ी ढुंगा को मिलन चेतना
1: का विशेषता
2: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भर पर्दो
2: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया भर्सन बजार में लॉन्च भइरहेको
2: सबै उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
1: हाम्रा सेवाहरू
2: ओखलढुङ्गा र खोटाङ को दिक्तेल बजार बाटै फाइनान्स को सुविधा सहित हुन्डा का सबै मोडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जुनसुकै मोडल का जेन्युइन पार्ट्स का साथ ही सर्विसिंग सेवा
2: एक्सपेंस गो सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिंग गरे भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
2: ओखलढुङ्गाको लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गोरुमारे भुजाङ ओखलढुङ्गा
1: सम्पर्क नम्बर 0375902222 9852988022 र 9842803000

संस्कार और संस्कृति की वो मान्यता सबके विशेषों की आजकल आत्मता यति कार्पेट में हो विगत 3 दशक देखी को सुनकर साथ यति कार्पेट के अंदर कार्पेट को पसारे यति को लोगो हमें न बिस्मिल्लाह यति कार्पेट कार्पेट को शहनशाह।

अम्बिका को गिरिङकार नभइजान ए अम्बिका को गिरिङकार नभइजान यतु बच्चा गएको कान्छी।

0: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड को मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब उखरिजुला को मिलन चोकिया
1: होंडा का विशेषता
2: जापानीज ऊर्जा प्रविधि उत्पादित।

0: Raio Rádio Solo é tempo.
1: Solo FM 101.2 MHz. Ujjwal bhavishya ko lagi hamro abhiyan.
2: Sanche. Solo FM Studio Time.
3: It's 5 PM.
1: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वारामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुतुन नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू.

0: next to your heart. Zulu FM 101.2 MHz.
1: TWR Nepal Nesu Jo Margadarshan Radio La Prastutile Jai Masi. जी क्यों मोगोई डाक्ती शिन क्यों मुतां दुप्पी परला संग निजी के त्यांदो क्लियामो केन दिनी लियामो केन द्वाबीं
2: नवे तमाके सिंगले आनसंग अध्यापी परला कुंजो के दिसुं रोगला नारिंग के वाले सुं जैसे कि दिशना भविष्य शकला सिक्यने मासिंदो कुंजो के सितंगा दुख दुख सिनी ये कि पंग युवाएं तमारी सिक्यन तेरुगला मैं दिलाना मेरे दिनी दुख जीतीं धरती की ऐसे की निंजी परला काम की युवाएं तमार दिशना भविष्य शक्ति सोचनला ये कि मांसे निमती ऐसे की कोला भाई बना दिंदो ये मैं मिलना हूँ तबोंगी थोड़ा टाइम समान्य तिला सिक्यन तेरुगनो है समान्य सिक्यन हुआ कि ये सुधरन गुंजना है तरह दाकुला छो है गुंजने से क्या ने दाकु दाकु धर्मी नंगला ये मैं क्या ने शुक्तुक जुए समान दासे यंबा ने ने सुसां नंगला शुक्तुक जुए समान छोला सिक्याव दी गुंजी तेरो दे गिराइन चिंगिंग में नंगला उत्पत्ति आच्छाई की जीतर तंगा थानी हुआ है कहती है कुछ जीन देवाचंद की थोंगी हुआ है समय तीजी ये सुलाम देवाचंद की गोई इंजीनियर से समय यह मसीह से गोसीन ये सुखेश्वर निशियां धाबु कोरोना दिनाना शुभ मुद्दे चलो देवाचंद ला उन्हें तो निचिका नाम दे खुआतरा जुना हुआ है ये सुखी कोलाम सासे की रहनु पे इन समय समय चुमला चुमला ना संतान हुआ है युवानी के चोर बड़ा भाई बल्ला तीन की थेबले सीजा और सितान लाम तीखे छर गन्ये ना हो क्या तीखे दागवी था लाम नेमा जा सीजा दिन हुआ है चोर बड़ा तीखे देवाजन की को लाम तीखे थोंगो काम की समय तीखे थोड़ा देवाजन पेशों सुनी ये सुनी दुख से सीन तीखे बड़ा लोग लामां युवानी ये ओगी जीवा तरता लाम ये सु चीजा देवाजन की गोला धोके सीजा दिन हुआ है उनसे उतर दुखों लेते येसु ख्रिस्त नेशन मिशियां दोचले या मच्छु के संग हुकुम लांगना में चिरस में कोई दिन रुक तमा जुनांग वे कोई दिन नकली गुम चंग तेरु तमा तुनांगु नी जुनांग वे तमा कोई ही शावा नेशुर धकुला दोचल ला हुकुम लंग ये तुम है बेचार का क्या होते रे पार्टी लुक बदल के पारीं भूमि की वोटे नंगला तीन देगी लुकी को लाम जून जो को लाखा जिनो तमा सोबला नाम हो की है तमा तिके तिवाला वोटे नाना तीनी जिनो वर्जिन पर लाते हैं चिकबे चिकबे चिकानी तमा सुन सही थिंगु दोकर जिनो उतना क्या नहीं थे कितना जिन इंद्री इंचिंग सिंगन जो खड़ा लुक्तुआ क्या गनी जॉब की थोड़ा तमा लेमा जने जॉब की थोड़ा सिलुक दो के जिनो तमा का त्योहार हो आलाव पड़ला गनी जो त्यो सिलुक दो सोचे वर्जिन पर लाते कि दासा पांग थे दोगा थोंगी लोग ना तिला सिंग सो पड़ला खेले सरवा जोकुट थोंगी तमा खेले ये नंदा ले मुतिवा उतना जनी नहीं दोगा जीनो कि साथे खेल तो लंबो दोगा जीवी तो कहने चो बोला नहीं दे सिंगरा परजिन जीवी तमा जीवी टाइम लुकती हुई लुकती थोड़ा बोटेरा दे उधर निमचे तोगा चुंदे बंगे सिका चुंबुते आन जोगा तुम्हें लेकिन फिर दे जोक तुझे बे तमा तेरे रंगल हाथ तुझे बे तमा तुगो कल वाकी में सिनी नेमा चेने हाथ तुझे बे तमा फिर दे जो जी फल लुकती वाला ना तुम भी दे सिनी तमा ते नेला क्वाटी वाली सुर काम वाते ये काम देते सिनी हाँ को तुझे बे काम इंसान फिर दे जी लुकती जी चामा जी किसी की लाखा किरण की थोड़ा जैसे लानी देखी हुई तमो खड़े काम बताओ क्यों हुई तमा के लुक जाते ऐसे जीवी तमा किसी जो बोनी से वह नंगा जीवी मैं तो मुझे लेमा जानी देखी हुई किसी तो किरु तमो क्यों भूमि ना यंदो ये की भूखे वाला चामा की बोझी ना ये छोड़ने से दागी यह कोजी जी भूखे वाला चोर नौसिनी चामा किरे सासे खाचे ना किरे से लोग तीजी लुकती हुआ चामा किरे लुकती हुआ तय मिसुल जी से ये रहते लुकती वाला सोई रो बोझी ना हमें शिलो ले यानी लूट की ना हमें ललाई के वा ट्रेसा ताई जगी ना हमें ये मकांसा हम तो की ना हमें चुन छोजी कांसी विषिनी ना संतों तो की वे ये खा गुदंगु लुटी वाला मेरा चुनी जंग ने तुरंती थोड़ी लगी वे ये ऐसे क्रेज भगवान ने ले मुझे छरका इन भूख बड़े लोग शुक्र की थोड़ा मुंडवा कंधे पड़ने से मुतां किरां यंगवी निन्नों योरा चामा किरुनिशियां यमा तेंदो कांसनों तमा तिकी तेंदो की 이디 너키 너라 마트는 어제신이 되빈 마 탱독 저러면 집라 미지 김나랑 거래기 텃떡이니 소위지 외디 개우당 하루 외디 개우당 하루 나와제지 이게 다마 대야 로록당 사루 와제지 다마 티슈라 티슈샤르제 저렇게 알랭이 까라니 신경나 지기 고아지 보달 장이 지기 다마티 보달 난라 외등진 지기 다마티기 티문라 거래기 나가라 장이 우린 거래기 룩지 마틴도 다살람 기다토 기도라 꾸니 들지 니탐 레무린데 예수 그지에 말레마 파리인지 거기 다구라 다구 디쿠네소 샤와 캬나미 다만 다구라 캬지지 다만 다구지 니두와 다만 다구지 칼레티와라 다구 캬나미 Tamako Daku Tavlam, Shubu Bojuna Waslo, Nemo Cherkasain, Koji Tasitram, Daku Dajana Shuktojuin, Tamate Tukov, Shudio Kansamin, Silasin Dakulam, Dakuji Dikwanesur, Tukum Yeduki Tavlam, Yamakansan Surami, Long Dakula Daku Dikwanesur, Daku Corona Hokto Vinsin, Dakula Hokto Mojikasin, Udunan Daku Dikojain and Diji. Persimpangan dakwa jinjiru, dakwa ini cawu dikula dakwa lembang yang hamu kowe. Jadi ngalah Yesus Kristus taulam, memang sola cingiwai. Kuala suanangam, setan setuk jing, bukiru ini sang sejawai. Nong Yehu dijiwi, tinduk cawu, jinjiru ini jimulam, jidogarawai. Sama tinggi curunglam, syarakiran cawu insini, macini wasung sisin, jiju dua syokanglam, betul mamu yenye dumutunau. Hijaunya jin lokar melam, tindun tu korai jin, jauh inskripting, sahre khaksenau, ni mana tini jin, ni cagar rautiwalam, gomalat cini umbojinau, sama tiri jin, rautiwalat tak reja bojinau, sama ni macin nanglam, lomu nawi inskripting, sama ti tak rejiwa, sini tuksau tamam, nakam tiwa jinau, ngalasewa dia Amerika lam, ni nasangga utuk dokem, dakwi tak rejiwa, zumsa zumsa la jani. Nagam tiwa tinggojinau, teman sihi tinggi tamam, rimbu lagam na tinggi le, teman ti cinta doke, teman tiram ngerti dasila jogojinau, teman tukap lagi laga jani, tukap laga ji thawla, tukap laula tamam, guru la thawdom goji sini, ji lukci panlasang, tarle jekub laga jinau, kesi ni mara tiwa, tukap dasila wanyesung, ye tiwi ji tiki dasila, jawa thawdom gok chanau, ngalachane, Yola Dagbu de America Lam, Yau Daga Wujin, Namasini Kideji Nikide, Tamakansa Ninam, Yuji Jatini, Tamatuka Rolam, Tamalum Yulam, Chetup Sini, Tendem Jibojinom, Tamatiji Pitan Tomo, Rau Bojinom, Tamatini Tila Chetup Lakakinom, Tamati Lugrujin in the Jibojinom, Tamati Pitan Tomo Rau Jinom, Tamatila Chetup Rosan Sini, Tamati Chetup Yolam, Yaji Jaura in Shrub, Nimiki. Hakshen, Hanjiro Luksuji Mulam, Rodi Tamak Hanjiro, Jaganji Horen, Nikar Lagatiwa, Tiroji Kalajo Wojino, Tamachinji Dokajani, Mutumi Luksuji Lagatino, Mutumi Chin Dokajani, Mopajino, Tamati Mopalam, Tiji Gwanjari Nitiriji, Vipi Shaoji Tonga, Mopajino, Tamati Mopala Tiji, Gwanjari Nitiriji Dipiji, Shaoji Tonga Mopajino. Tama aku ni jauh dibiji perwajiran, macam ni matuma cani, jauh ki dibiji perlam, nopo cibojinau, hitam ki ngalam, nopo biji matuma cani, dibiji perlam, lab ni terus sulup kini, tam jualan nasun surjuin. Cerai ha makoh cani jauh, dikpatiwa percin perlam, tama cerai ki seni waktu dikpatiwa, teri matuma cani jauh dikpatin, long cerai ki sulan dikpatin ni, jauh lah kini wasusin, tama yang dekala lakbalang. Ini musim sisin, tidak sangat dikbayin. Tama tidak ni jokum ni, tama tidak umum ni malam. Sore tidak jauh tu kiri. Tujuan itu kesan dikbatiwa. Jauh injin si jasilan. Tama tidak kak sejiran. Umum ni, umum tiri dikbatiwa. Masa jam tama, tama al maka jani. Jauh dikbasang, jauh insyirulam. Tuduran kak sejiri. Tangan takni dikijin. Kakse terbang di luar dua. Sergei jauh dikbati orang min. Tama di mata mahu cari sang kiri. Tama sergei dikbati cerbal lihat kiri. Lunya kau jadi sokalam. Dikbati awal. Tama nyakui jin asam nasnan. Tulak wajib dikbati awal insinin. Aku ingin senang, jauh di bilik walasan, makan selendang. Ini diteri di kebatuan, lebih sama jalan di, disedek setar ke kalam, di dikbati jauh ingin sini, sama dikir kalah jalan terjuin. Sama meru cetar, meru raki salu, hiru jauh jalan juni terjuin. Sibi dikna gomi jen, syarwanya cetar, meru jikola tambangin, tab laga jain. Sama dikir suku warkir lam, Tama tila kini jokumda sini, kini jokumda sini se jani, naga kino. Nala chame, kini mutra doken, nala kula koni terji nokki, filakwaan, arjula te koni terji nou. Tama nyati tam hako maso, gunsa lale nyo nyitak semu, tama nyay nyima isi mu, rabila chesu sisi, nyerche goji sini nasam tangwae. Kaan insi nang, yuki rauji arke ulam, muru raki tani, tira setak ki rau insi ni, muske jiji nang. Tama ti setak ki rau ulam, jasa ki fapo se, tama thula pangri rasala, chini di nang. Tama long sang, maala oa chani terang, chini yuki nang. Tama ti uki ti rau ulam, rauji unmiji nang. Tama ti setak ki rau, tong maata roa se, ki pangri rata rengo se, buram oji nang. Tama tira maala ngo bala sama, tama kom Lambu balacu, nani ni siap saya. Tama di pang tinggal tu bu, nasam no. Tama di cedar giro, siap saya ni nasi buji no. Nah, so balat ini, di cedar giro ulam, ni insi kau ni malam, pang tinggal tu ni giri. Tama tinggi tiap hari konjol lam, ni tinggi tiap dik bati lam. Yerang cedar giri, rodi kalau jangan yogi no. Tama ti rodi si no. Tama ti balat ini sang buji. Urlah kita merusak, jangan itu jinau. Mianah sangat tinggi belaka, tapi tembok jani juga jinau. Tama coba lagi rosuye, tama mianah sendam, mian lemah jani dikikulam, mian lemah jani dikikulam, jani terbelam. Rung manglo boji ju, rung cedar ki rauji, kogla dina sendam, coba lagi siye, imurufu tadi, kormu gaji jinau. Tama dikikulam, mati bersih gantiin. Nalasan eh, muncul pola nyetiki korlam, nasam tengin, hipalang yang nasam lam, esai kita ini tertanglam, bicara minum tamat nasam syasung, tinggi dibati wam, sekali dago muru wosinam, kiki khat dago kor mudidau, kua jamsal sina muru wosinam, kua pas sina kor mudidau, saya utara dini, esai kita nala umu, bilang utungi, tamat tinggi wosu, bilang aten dene, esai ti tiasul. Wau ini yang sih kan sih nama, bukan ada di kantor dunia lagi. Jadi merulah kerana jawab ti, besok yang ni tinggi way. Jadi kalau langkah terus sang, memang jangan lagi way. Tapi lawannya di tiri, di kampi tambahnya sang sisian. Nah utara jani, ni ada dua ni juga untuk jualan. Jadi kalau sih kan tiri, kancil tambah kah ini sisian. Yesus Kristus, dakwa di cedar ki, rawu junah way. Jadi kalau dakwa di pertiwa, tiri jangan bintang sung. Tapi kalau dakwa di pertiwa, boleh bintang ubi pertiwa. Kungnan sung, kolong dalau jep nasung. Tama ko dabi suko jop, tama dabi hokta ma junang wae. Dabi ki long sang, dalau jep nangu, suko jop junang wae. Tukyani teng bukwan jop, papa wujun tuchen katirang, teng bukwan jop junang wae. Kulgi sewa yesu nyesurang, dewa janji bu junang wae. Tama ko yi dabi dikbi togla, junang ni, gotang nang ni, chatar junang wae. Tama telepar ki ngarti wala, ngatangu do junang wae. Kulgi tele tam dekhala, onze jannang wae. Dabi chokon jok tam, tokte ma chokon joki sewa, teng bukwan jok khoara junang wae. Amen.
1: Dati wala di Marka Darshan Radio Nyeni Chukai Nasun Nala Mwawe Dati Wui Molam Thup Nang Wachu Dati Wala Ara Uratan Shirup Nasun Daku Di Rasala Chetu Piri Shewi Chokpa Marka Darshan Radio TWR Nepal GPO Box Number 8975 EPC Box Number 2561 Kathmandu Nepal Phone Number 0855910053 Mobile Number 9813300690 WhatsApp Number 9813300690 Long Sang Dapudi Dasala Chetupno Mathewa Sekla Tegila Tashibili Jai Masi
3: Hardik Badhai सोलु तुतकुण्डर नगरपालिका नौ गोराखानी सन्मान डाँडा निवासी श्री दावा तामाङ तथा श्रीमती किली तामाङको कान्छा छोरा श्री लकाराम तामाङले मिति 2083 जेठ 6 गते बुधबार 2026 मे बीचमा बिहान 3:30 समयमा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा 8848.8 मिटर दोस्रो पटक र मिति 2083 जेठ 10 गते आइतबार 24 मे 2026 बिहान 5 बजे मुक्सी हिमाल 7861 मिटर सफल आरोहण गरी 4 दिनको अन्तरालमा दुई हिमाल सफलतापूर्वक आरोहण गर्नुभएकोमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौ। साथै आगामी दिनहरूमा पनि लकाराम तामाङको पाइला पाइलामा सफलता रहिरहोस् शुभकामना दिनेहरू बाबा मम्मी दावा तामाङ ली तामाङ श्रीमती मनिषा तामाङ जेठा दाई भाउसु लक्ष्मण तामाङ मनिषा तामाङ माइला दाई रामकुमार तामाङ जेठी दिदी भेना सीतापुरी तामाङ पूर्वा तामाङ माइली दिदी भेना गोयापुरी तामाङ ज्ञान बहादुर तामाङ कान्छी बहिनी गंगापुरी तामाङ भान्जी अनन्या तामाङ छोरीहरू मनसुन्दन तामाङ स्नेहा तामाङ तथा समस्त बोमजन परिवार सोलु दुखुण्ड नगरपालिका नौ गोराखानी सन्मान डाँडा सोलु

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
3: Sound check. Sunny FM in studio time.
0: It's 7 p.m. Saturday, 7
4: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतुन नगर पालिका 5 सोलु कुंबू

0: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड को मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन चोकमा।
1: होंडा का विशेषता
2: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भरपर्दो
2: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लंच भइरहेको
2: सब उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी।
1: हाम्रा सेवाहरू
2: ओखलढुंगा र खोटाङको दिक्तल बजारबाटै फाइनान्स को सुविधा सहित होंडा का सब मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जुनसुकै मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइन का साथ ही सर्विसिंग सेवा
2: एक्सपेन्स को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निःशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिंग गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ।
2: ओखलढुंगा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिशरण नगरपालिका 11 गुरुमारी भुजाङ ओखलढुंगा।
1: सम्पर्क नम्बर 0375902222 9852888002 र 9842803000।

0: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संचय सोलु एफएम स्टूडियो टाइम
2: इस 9 PM रात को 9 बजे
3: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतु नगर पालिका 5 सोलु कुंदू
4: प्रिय श्रोता अब प्रसारण हुँदैछ TWR नेपालको प्रस्तुति कार्यक्रम मार्गदर्शन कार्यक्रम सुनेर आशीषित हुनुहोस्।

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: साउन्ड चेक सुरु एफएम स्टुडियो टाइम
2: 10 पीएम रातको 10 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय अफसेट प्रेस सोलु दुतुन नगरपालिका 5 सोलु खुम्बू